ओम श्री साई राम। ऑफरिंग आवर मोस्ट हम्बल प्रणाम्स एट भगवान्स डिवाइन लोटस फीट। एस्टीम्ड एल्डर्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लविंग साई राम टू ऑल ऑफ यू। एज अ पार्ट ऑफ द ऑस्पिशियस ओनम सेलिब्रेशंस इन प्रशांति निलयम, दिस मॉर्निंग वी हैव द महालक्ष्मी सिस्टर्स कुमारी पार्वती नारायणन एंड कुमारी पूजा नारायणन फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला offering a bouquet of devotional songs at the divine lotus feet of our most beloved Bhagwan. Kumari Parvati Narayanan is currently pursuing her second year in BDS and Kumari Pooja Narayanan is an 11th standard student. Daughters of Dr. S. Narayanan and Srimati Rajita Narayanan, they have been trained by their grandmother and guru Srimati Kamala Subramanyam. Even from a tender age, they have been blessed to sing in front of Sangeeta Kulapatis like Sri V. Dakshinamurti, Sri Naiveli Santana Gopalan, Dr. K. J. Yesudas, legendary singers Srimati P. Sushila and Srimati S. Janaki.

0: थैंक यू।
1: मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आई कैन फील साईं बाबा सिटिंग एंड गिविंग मी ब्लेसिंग्स। सो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज़बम्स व्हेन आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग। सो

मुझे एक चीज का रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मैं साक्षात बाबा के सामने लेक बहुत बहुत मन था मेरा बहुत पहले से कि मैं आऊंगा, मैं मुझे सुनाना है गाना। आज मुझे मौका मिला है, कहीं ना कहीं मुझे भी फील हो रहा है कि लाइक काश और पहले आ चुका होता मैं यहां पर।

0: Thank you. Thank you.
1: जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, मेरे साईं, मेरे बाबा, मेरी आंख भर आती है। आप दे रहे हैं हमें इस कदर, आप दे रहे हैं हमें इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले ही मेरी झोली भर जाती है।

दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, साई ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, साई ऐसा तो कोई गुलजार नहीं।